भी माता पिता की संतान के अधिकार में नुकसानी वाले प्राणी के व्यवस्थापन द्वारा कानून आवश्यक प्रभाव को डिसेंबर में तीव्र बंदी राष्ट्र संघ को चेतावनी यूक्रेन में यथोपात में आक्रमण के कारण 36 जनवरी को मृत्यु हुई तो पीएमआर आक्रमण को चेतावनी नेपाली प्रभावको फिफा मान्यतामा एक स्थान खस्कियो भारत एकछिन स्थान रहेको आइसिसीको आगामी बोर्ड बैठक नेपालमा पर्ने तयारी

अनुसार डबरी मौका अनुसार मध्य तथा पूर्वी मध्य रेखाई प्रशांत महासागर में समुद्री सतह को तापक्रम जून में औसत भाग 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ी रहेको अवस्था

की संख्या के बारे में नुकसान का देवता ने को व्यवस्था पर मतदान होना आवश्यक रहा को व्यक्ति को बनाई एलिनो को प्रभाव दिसंबर में तीव्र बने राष्ट्र संघ को चेतावनी यूक्रेन में चला प्लस में बम आक्रमण होगा व्यक्ति सेना को मृत्यु इथियोपिया में आक्रमण को चेतावनी नेपाली फुटबल टोली फिफा बने तरफ एक स्थान खुस्की हो

0: विषय को ध्यान पहुंचाने सुप्रचार आशी ठीक करने
1: रद्द करे तरत निकालने
0: सदैव लागी दीक्षा राखने
1: सफल न मिले पूरे शेर दांत राखने
0: मानव तीव्र दांत तथा रंगे को दांत निकालने
1: मच्छी को दांत तथा दांत को पश्चिम की पुरस्कार करने
0: डिजिटल के सरी सेवा
1: दुर्घटना महिला भाषी को दांत तथा मुख को हड्डी को उपचार
0: तथा
1: आज पुलिस में भर्ती हुए को कॉस्मेटिक उपचार सेवा

0: 40 वर्षपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
1: चिसो पदार्थ मात्र मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौँ।
1: स्वस्थ रहौँ। सुखमय जीवन बिताउँ।

0: देखिए मात्र उस समय धनिक सभा स्वस्थता या स्वर्ग खड़क होने और ज्ञान शुरू करेगा सर
1: हमारा विशेषता
0: ये गणेश का सारा पारिवारिक वातावरण
1: Thank
0: you.

इन्हें अपन कार्यभार संभालना पड़ेगा। यह कार्यकाल इन्हें सामान्य प्रशासन मंत्रालय का अतिरिक्त समूह में कार्यरत रहेगा। कलशी कास्के नगर पालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी के रूप में कार्यरत ने बहादुर वरिक काठमांडू को गोकर्णेश्वर नगर पालिका में सर्वभूता बास्के नगर पालिका में मंगल कार्य के औपचारिक कार्यक्रम और लघु हाकिम घिमिरे का स्वागत तथा पुराण हाकिम कोजी को विधेयक लेकर नगर पालिका चलेगा। मंत्री का कर्मचारी का कमान संभाला आयना घिमिरे अर्थशास्त्र में पीएचडी करदाता महान टीम मशीन माइक्रो मैनेजमेंट तथा उद्यमशीलता विकास में पीएचडी करना खोजा। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बांसगढ़ी नगर पालिका

अपना मुर्गी पर योजना बना रखी कर मुर्गी बच्चा के अर्थ अनुसार पालिका

विश्वास लग्न और सही जानकारी पाएगा को नकल उपचार केंद्र आधिकारिक बाइक नेपाल डट गुवाहाटीमा जाँच आवश्यक जानकारी लिएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण शाखा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै

0: safari sudah masuk sesuai itu ibu negara pemerintah boleh tak menikahi terus kalau tuh itu ikut orang orang salah mengalami kisah tuh mah cukup dikira kalau tak kalau ini ini terus kalau mana nanti pilih terus kalau ini salah mengalami boleh tak patuh ni tipai kalau salah Saudi Arabia akan diadakan antara kebimbangan istana bimbang mereka yang semasa cuti dilakukan di utara Amerika Utara pada hari tiga akan bertemu pada Michael Salam. Yang kemudian dikali, apa lagi beberapa kompani Saudi akan bimbang para mereka pusing dari kubur. Untuk kota Muslim yang bimbang secara kompani pada semasa itu yang telah ibu diulang lalu istiqamah mereka sama. आपको युवाओं को कुछ जनता पार्टी के लिए अभी दिखे ले सरकारी चेतावन के बाद उस सरकार दिल्ली में पड़े गए क्या विचार थोड़ा प्रयास करों ये पढ़ने वाला लिए का सम सुपार्टी का अनुसार राजधानी पुणे प्रेस के लिए क्या कंपनी का दस हजार मानी चल रहे नियंत्रण लिए कुछ तरफ़ संख्या को सदुपयोग करके पुष्टि में साबित हो सही ना अगर एक प्रोफेसर को अनुमति दी को सही ना राष्ट्रवाद में 20,000 बंदर को दूसरे करने के लिए परिचालन में लिए कुछ प्रोफेसर करने को निर्वाचन आयोग प्रमुख के राय और दुरुपयोग मार्ग करने का सम
1: Kita kontinu punya perayaan inspirasi pada dua tahun

0: दशमी शिव दीपावली पर्व को अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग इष्ट मित्र स्वदेश तथा विदेश में रहने भाग संपूर्ण हिंदू दाजू भाई दीदी बहनी हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त करद।
1: दूध को क्या बजार की बजार में बात करो, अगर सही चीज आते दूध को मुझे फायदे खाएगा।

0: चालीस सड़चालीस पचहत्तर पच्चीस सहारा देने आए थे सभी दिन किसान को तुम किसान का ही भरोसा
1: Thank you.

थी। कहा रही भाई तीन पावर बनेगा रहा वो बनेगा दुकान पर दोनों अच्छा कर रहा कहाँ से मिला पशुपति